कृपा से जमजमे राम। बोले शेख फरीद प्यारे अल्लू लगे

एतन होती खाक निमाणी गोर करे एतन होती खाक निमाणी गोर करे अज मिला एक फरीदा तक मुकुंजड़िया अज मिला एक फरीदा तक मुकुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम ना आइए झूठी दुनिया।

बुढ़ा हुआ से फरीद कंबल लगी दे जैसो वरिया जीवना पीतन होती थी।

गगा गोगन कुंद्रवो सास सास जपनीत काम सासा देता बिल मना करियो मीत मैं

चलने चल हार बिचारा ले मनो चले चलन हार विचार ले मनो गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिखनो जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गहे

संतन कर पाया। तज अब मान लिया मनमोहन राम नाम हृदय में तो लाल खेप।

छिन छिन और देहात है, फूटे कर जो पानी सो दिन आवन लागा, सो दिन आवन लागा। माँ पिता पाई सुत बनता, कहां को है कांका, जब लग जोत कर में बरते आपस न बूझे, लाश करे जीवन पर कारण, लोचन कछु न सूझे। कह कबीर सोरे प्राणी, कह कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो।

समझ अचेत चेत मन मेरे, समझ अचेत चेत मन मेरे, कथे संतन

darling. जियो तलो ब्योहार है जको तो जानो जियो तलो ब्योहार है जको तो जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुख समान।

हरजसरे मन गायले हरजस रे मन गायले जो संगी है तेरो असर बिचो।

रंग तरंग करीब मस्त रंग तरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कवि से खुसाए खां सबे उठ जासी।

दुनिया कैसे मुकामे, दुनिया कैसे मुकामे।

सब लोग पढ़ते फिरते बहुत आयो। कल खोर समुद्र में मूर्त थे, कब हूं मिट है नीरे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ। जिन्हें अनुगुरु नानक पातशाह अनुगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है, और नेड़े कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा। तो प्यार नाल सारे आखो अनुगुरु अर्जुन देव। गंगा जी असी गुरु की संगतं दे सेवादार, पातशाह हुक्म करो। हलो कह लगे गंगा जी, फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया। पर कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए। अज गुरु की संगतं की सेवा करनी है, अपने हथी पहला चक्की पी। दैवी गुणा वाली मां जगत माता, माता गंगा जी अज गुरु की संगतां वास्ते आप चक्की पी। आटा तैयार किया, फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई, उत्ते चिट्टा रुमाल पाया। माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नू बुलाइए। हजूर कह लगे नहीं गंगा जी, असी आप ही अपने सिर पे। तो सन्ने पातशाह जी कड़ा प्रसाद दी ते अपने पवित्र पावन शीश ते रख चादर दी हुकत मारी, तुरन लगे। माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है। हजूर कह लगे गंगा जी, जे संतां की सेवा करनी तो तुसी भी ठंडे जल की गागर भर। जिथे संगत नूं भुख लगी उथे प्यास, तो मात गंगा जी ने सिर दे उत्ते गागर जल की रख ली। हजूर तुरन लगे, कह लगे गंगा जी पखा भी नाल लै लो, गर्मी बड़ी। तुरिया जाते अज पंजवा गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु। रात दस गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो। नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते, पर समुद्र कदे नहीं मिलता। समुद्र कदे नहीं आता, पर तक लो प्यारी सात सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों तुर पैंदी है। जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात दस। गंगा जी सुनो ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज, भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे, ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया, पर फिर भी गुरु की संगत प्यार भी किस तरह अरदास कर। गंगा जी सुनो, साहबा ने दर्शित की थी, माता गंगा जी कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है। केड़ी सारी संगत रात का समय प्यार इज भी है ते अरदास कर रही है। मेरा

ने अपने प्यार की मिसाल कितनी सुंदर है मेरे दाता जी, फिल्म करे चातक की कृपा न उतरे सांस न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हमको लीजिए गोद घुमाई गुरु दर्शन संत। मैं गंगा जी कहता एडे प्यार वाले तेरे सिख हां गंगा जी आओ चल के छे भी दर्शन अगे गुरु की संगत कीर्तन करके ते हुण आराम कर रही साहब जी पहुंचे जथेदार नूं बेनती की जथेदार जी धन गुरु नानक दियां संतां वास्ते कड़ा प्रशादी दे जथेदार जी उठ के बैठ के सारी संगत नूं सावधान कीता प्यारी सार संगत उठो कोई गुरसिख आया है गुरु ने उन्हें मन प्रेरिया है लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया कड़ा प्रसाद जी दे जा रही है उठो पहले अरदास करो जो भी गुरु वालों दास मिलती है ना पहला अरदास करो ये अरदास करे तो वो गुरु की बख्शिश बन जाती है क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है कार्य प्रसादा तैयार हो अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए क्योंकि अरदास क्यों हुई कोई कार्य नहीं गुरु की नहीं कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पहला गुरु की अच्छा तेरी चंगा कर मिले जय प्रसाद दसा सुख मंदिर किसे त्याए तो सारी संगत सावधान जथेदार ने गल च पला पा के अरदास की ए धन गुरु नानक पातशाह तेरा प्रेमी सिकड़ा प्रसादी देख लेके आया है सिख नू नाम दान बरती सिख नू सिखी दान बरती अदू कह लगे गंगा जी सेवा का फल मिल गया जी अज सी प्रेमी सिख बन गया गंगा का सेवा का फल अरदास करो दी साहबा ने अपने हथे सारी संगत को कड़ा प्रसाद करके गंगा जी हूं जल भी पिया साहबा के सोहने हथा नाल जिन्हें जिन्हें प्रसाद लिया उन्हें ही जपया श्री वाह जल छकाया झूठे भांडे कौन मांज रहा है माता गंगा जी वो हथ पवित्र जो गुरु घर की सेवा जो गुरु घर की सेवा तू मांजे हैं भाई साहब जी लिखते फिर सेवा बिन हथ पैर होर मेहबल कर दी सारे जल सकिया भुख भी दूर ते प्यास भी दूर हूं संगत आराम कर रही है ते तर गुरु अर्जन देव पातशाह जी लैके पक्का सारी संगत को पक्का कर पक्का कर दिया प्यार क्या कि

पाव फूटी किसे राह नहीं किया सांस नहीं उठो तैयारी करो कमर कसे कर लो और पहुंचिए करिए गुरु दे सारी समय तैयार करो तो रुपई है गुरु दे नाले तुरे जाते नाले शब भी तारना पड़ गई क्योंकि सिख जिस वे गुरु वाल तुरता है निंदिया चुगली करता नहीं शब भी तारना शब्द नार जी ता जो उतो ही आदमी शुरू हो जाती है गुरु के दर्द से लगनी संगत तुरी जाती है पढ़ती जाती

भगवान जाइए तो मुझसे खा नहीं तुम्हें सदगुरु आत्मा जन तिरके चौदह रसड़े प्यारे कंतिना के पास तोड़तिना की जय मिले जी कहो नानक की। बाबा पिताजी पहुंच गए जाके साहबा जी रस्तों जोड़ा ले ले रो के क्या नीचा रूज करने वाले पत्ता नु पावन करने वाले तुम्हें नहीं कॉपी अभी उसने बाबे यार कहते सोने सुख तू छोड़ साक्षा इतने बैठे हो जोड़े पे चार रहे हो हजूर कहने लगे बाबा तो इन्हें नेत्रा नाल धन गुरु नानक के दर्शन की तीर्थरा नीज ला के वेखे जोड़ा किसा है बाबे ने नीज ला के तकिया सचमुच जो जोड़ा मेरे धन गुरु नानक पास मेरे संगत हर प्रभु गुरु कितने रहेंगे थोड़े नेत्रा चाहे हिरदे पे बिठा प्यारी साथ गुरु की बख्शिश द्वारा जो गुरु नानक ने साक्षात आप इतने सुन संगत वाल वेखो इस वे संगत ने तकिया उपा मार के रही जाए कि पुल की जेदे को गुनाह पुछाने सन और जोड़े जेदे को जी दान लेना सी बाबे ने कहा पातशाह करो कृपा से हजूर उठे श्री हरिमंदर साहब जी के अंदर आके विराजमान हो गए हरिमंदर साहब जी का ध्यान रखे प्यारे बोलो संगत दी नजर नहीं प्रभ प्रवाह क्यों जा रहे गुरु ने कोशिश की थी क्या प्यारी साध संगत रोवो न पातशाह एडा वा पाप कर बैठे हजूर कह लगे नहीं जब तुम इतनी खेचना की अभी कह लगे थोड़े प्यार के उत्ते प्यार की ज्योति प्यारे दे दीदा बख्श लाओ अभी कह लगे पहला पंक्ति पढ़ो जी रस्ते पड़ी दर्शन प्यासी फिर स्वराज चितवो वर्दी नींद संगत ने फिर घर के पड़े आ अगली पंक्ति पढ़न लगे अभी कह लगे ठहर अगली पंक्ति तय खोल कपट गुर मेले आ नानक हर संघ भी आओ फिर थोड़े पहले मन के किवाड़ तक खोलिए मन के किवाड़ दरवाजे जे पूरा गुरु ही खोल सकता दर्शन दीजिए खोल किवाड़ ओ किवाड़ मालिक खोल जिसे बख्शिश कर इसे महापुरुष ने लिखे है मुर्शद ने जद बूहा लाया मुर्शद लो मुर्शद ने जद बूहा लाया अंदर जाती पाई हर पासे गुरु नानक बैठा निरंकार छबलाई चरना विच पदम है सोना जो दुनिया नू ठारे चन सूरज इथे पानी भर दे मानक मोती सारे ला दिता हुआ सज्जन ठाक का ला दिता सी भूमि डाकू का ला आओ प्यारे हो मेरे बच्चे थोड़ा भी मुआल है सारी संगत थके हुई हजूर ने अमे दृष्टि सारे और थकिया बख्शिश की थी देखिया जपो सतनाम नाम भी बख्शिश द्वारा ओ नाम रचना द्वारा हिरदे से जाके वसिया प्यारी सार संगत नाम का धक्का जिसे ने वजह भूआ फुर गया अंदर से बाहर नाम ही दिसन लग गया आखो तरी हजूर कह लगे हूं पढ़ो संगत ने फिर पढ़िया खोल कपट गुरु मेले नानक हर अच्छा एडी बख्शी हजूर कह लगे जो गुरु के प्यार सिख जुड़ता है गुरु उसके सहमत करता है बख्श ओ बख्शिश संगत से की भी की है क्योंकि जो संगत को लैन वास्ते पंजवा गुरु नानक आप गया है तो भी गुरु नहीं लिया एक दिन नहीं केडे पाठा वाले हो प्यारे एक वीक पूरा माताओं भैणा बच्चिया गुरु बजुर्ग वीर अधी नागा नहीं पाया एक नागा भी कीर्तन नहीं पाया बाबा जी बचन करते सर जेड़ा गुरु ने दर्शन च नागा नहीं पाता गुरु मेरा जनाजा नहीं पा यह तो सिद्धि है सारी संगत ने मत्था टेकिया पातशाह इन्हें रहमत हजूर कह लगे हाँ सात संगत यह प्यार गुरु कार्य यह बख्शिश है चल सर्व गुरु एक पैदा जाए चल सदगुरु और पैदा
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਲੈ ਦੱਸੋ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਛੇ ਕਲਾਸਾਂ, ਛੇ ਲੈਸਨ ਕਿਹੜੇ? ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਰਮਤਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਮਤ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੀਰਾਂ ਪਾ ਲਓ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾ ਲਓ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਮਤ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਦਾਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੌ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰ ਹਰ ਪਰਨ ਤੁਲ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰਮਾਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਜਤੀ ਸਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਪਰ ਦਰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਪਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹਟਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸਰ ਸਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਉਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਉਪਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸਤ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਉਸਤ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਸਭ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰੋ। ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਏ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾਈ ਭਾਵੇ ਥੋੜਾ ਸੋਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਿਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਥੋੜਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਠ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਖਾ ਲਈ, ਜੇ ਅੱਗੇ 12 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁਣ 10 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਪੀੜਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਹੀ ਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ। ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਾਕਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁਣ ਅਲਪਹਾਰ ਕਲਗੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਅਲਪਹਾਰ ਸੁਣ ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀੜੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨੀਏ ਸੁਣੀਏ ਸਾਲੂਣੇ ਹਰ ਤੁਲਸੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣੇ ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀਏ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਓ ਇੱਕ ਜਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ
बाबा और खाना खुद ही खुआ जिस खाते तन पीड़िए मन में चले विकार तो खाने न खाए ये मन विकारी मन बुरे पास के जाए और खाने छे कितना थोड़ा समय है बाबा जी कहने लगे इतना थोड़ा समय जिस अमृत वेला तो क्यों क्योंकि अमृत वेला खास पक्ष छेवी पौड़ी के लिए है ऐसा जी कहने लगे सतगुरु का उपदेश कमाए गुरु का उपदेश जो गुरु का हुक्म है उन्हें चौड़े स्वागत कौन है जो पति का हुक्म है लैट पुत्र कौन है जो माता पिता का हुक्म है सर सिख कौन है जो गुरु का हुक्म है जो गुरु का हुक्म अंग छिकना माड़ी पढ़ सत्संग में जुड़ना बुरे को मानो छड़ना चंगेगी पन्ने बनी ए गुरु का हुक्म है गुरु का सिख मन के सिखी की रोशनी चला जाता है फिर जिथे सिखी की रोशनी है उत्थे गुरु सतगुरु का उपदेश कमावे जिस वे छे पौड़ियां चढ़ जाता है छे क्लासा पढ़ जाता है तो भाई साहब जी कहते वो कौन बन जाता है फिर भाई साहब जी कहते वो गुरमुख बन जाता है भाई साहब जी कहते गुरमुख सोई जो सहज उन्होंने सहज अवस्था की प्राप्त हो संगत दूर नेड़े चल के आई संगत आप भी तन हो इतों के प्रबंधक भी तन होर भी कई दूजे गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक गुरुद्वारा रामगढ़ जा हर सेवकों ने पिछले टूर के उथे भी कीर्तन द्वारा हाजरिया पड़ी बड़ी संगत जुड़ी अच गुरमुख माई पाए इतने आए उन्होंने दर्शन करके मेरा लू नू पेट कर नहीं तो कई थावान से साढ़े अंदर कमजोरिया आ जाती जी मैं फलाने गुरुद्वारे नहीं जाना फलाने गुरुद्वारे क्योंकि सिखाओ जिसे गुरु का नाम आ जाएगा गुरु तो एक ही है कोई ना चीजा मैं बड़ी खुशी हुई मान कुबेर करे वस्तु सामू सदा ला के गुरुद्वारे बेशक बना लो कोई हद नहीं गुरुद्वारे बनाने वाली चीज नहीं है पर गुरु का जो निशाना है वो साढ़ा एक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पूजा गुरु की संगत गुरु नानक का नाम गुरु नानक की बाणी गुरु नानक का ध्यान जब सत्संग जिते चार चीजा हो गई बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते सर उथे गुरु नानक जरूर हो गए अच कोई समा ज्यादा हो गया है पर ज्यादा होया जाया नहीं क्योंकि अच इस वीक का बनाया प्रोग्राम आखिरी कीर्तन से रात का तो कोई समा चढ़ गया है अच सवेरे जिस वे कीर्तन का भोग पाया तो गुरु प्यारे बैठे सामने कह लगे भाई साहब पिछली साल वाली साखी तुम किधरे अफ्रीका नैरोबी की थी काफी रिकॉर्ड गई साखी सुनी है चित करता है फिर फिर सुना दे उन्हों का हुक्म सोचे क्योंकि बाबा जी के पिंड के नेड़े ही रहने वाले सौकिया के रहने वाले उन्हों का हुक्म प्यार पिछली साल वाली साखी आप जी ने सबकी समा कुछ ज्यादा होया तो समा सफल है आई करी लक्ष्मी जो सौ बार भी आवे तो थोड़े प्यार को देख के सेवक का चित बड़ा पसंद है नहीं तो इतना चिर बहना बड़ा कठिन अरे गुरु की बख्शिश है यही रहमत है गुरु की जो साडा मन गुरु के नाल जुड़िया है तो आओ अरदास करिए अनुवर्जन दे पातशाह साडे ते बख्शिश करो ये जड़िया मंजिला हैं गुरमित्री दे गरीबी ये सारिया पौड़ियां असी मंजिला से चढ़न की कोशिश करिए आस्ता आस्ता ये दाल ये मंजिल साडी भी मुक जाए तो साडी मनुष्य यात्रा

मानस जन्म अमोल कृपायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, जात्यो कौटी बदला कातूरी को गाहक आयो, लाद्यो काल बिरख जिबा आयो, लाभ लापन के ताई आयो, लाभ लापन के ताई, मोहन ठगौरी स्यों उर्ज पहाड़, मोहन ठगौरी

अब मुहे नाच नू ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे। ये पाम ने शब्द शरण किया है। आओ एक जो कि ज्ञानी ज्ञान सिंह अलमत साहब जी की बहुत ही सुंदर रचना, जो आप जी ने पंथ विच बहुत ही गायन की है, जो उन्हां दी सब तो पहली हरमन प्यारी जिथे भी कीर्तन करते सन वह रचना संगत विच जरूर सुनाते सन, तो बड़ी कठिन है। आप जी उहदी लिखतकारी ते बंदिश की बनावट आओ अड़ाना बहार की बंदिश है शर्मन करनी कि किस तरह धूम परी जगत में तुमरी। ये आम नहीं किते भी गाई, पहली बारी जा किते किते इस बंदिश असा ने गाई है। तो ध्यान देना यदि रचना पहला आप शर्मन करो बोल जो बड़े औखे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की शिफत की है, ध्यान देना ब्रिज भाषा की ते संस्कृत की चीज है, ध्यान देना। धूम परी जगत में तुमरी महाबली भीम कंपयो थर हरे गदा त्याग चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो। इस नूं उन्होंने कंपोजिशन विच बन्या है, ध्यान देना। इस चीज नूं इन्नी औखी पढ़न विच औखी है पर इस नूं उन्होंने बंदिश का स्वरूप दिता है, बड़ा आनंददायक चीज है, ध्यान श्रवण करना। धूम परी जगत में तुमरी महाबली भीम कंपयो थर हरे गदा त्याग चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो कंपयो तरणी तर, कंपयो तरणी तर धरती कंबगी, कंपयो तरणी तर थारा रारा रारा कर इंद्रपुरी धूम परी जगत में तुमरी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी आनंदपुर जय जयकार हो रही है, सारे पासे धुम पै गई, तो इंद्र का दरबार से वड्डे वड्डे भीम जेडे द्वापर युग के बड़े बड़े बली सन वह भी कंब गए, गदातार वड़े वड़े भीम वर्गे अर्जुन वर्गे सारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी शुभ तो स्नान देख के उपरों धरती कंबण लग पी, आकाश कंबण लग पाया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इन्नी चढ़त है। अगला पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। तीर पातशाह दे किस तरह चलते ने, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार छडत तीर कलगी तर, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार छडत तीर कलगी तर, सरा रारा सर के जावत तीर, सरा रारा सर के जावत तीर छतिया चीर, दुष्ट सबन के तरफ तरफ निकसे प्राण धागे रघबीर महावीर रण तीर की गिरत पगरी धूम परी जगत में तुमरी। तीसरा पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर खंडा खड़ग तुपक तबर महा जोद दुष्ट दमन करे। चक्कर न्यांग सिंह कमाले ते चक्कर पाउंदे हन, ते जदों रण मैदान च लोड़ पैंदी है शास्त्रां दी, ते जदों उह आखरी शास्त्र दमाले तो ला के ते चक्कर मार के सिर ला दिंदे सन। चक्र चलत खंड खंड चक्कर चल रहे ने, चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर खंडा खड़ग तुपक तबर महा जुद दुष्ट दमन करे। गंधर्व अलमस्त के प्रभु की जग धूम परी डरत पई शिवपुरी पेख आनंदपुरी। ब्रह्मपुरी शिवपुरी इंद्रपुरी सारे देवत्या ने पुरियां हैरान हो गई, तो डरन लग पियां आनंदपुरी देख के। तो और ये रचना बड़े आनंद के नाल प्यार के नाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस्तत अलमत साहब जी की रचना बड़े

ध्यान देना इहदा पिछोकड़ ते इतिहास यह है कि आप जी नूं इतिहास दा ते पिछोकड़ दा पता लगेगा तो फिर होर आनंद आएगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी साहब कमाल, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी, गुरु जी बड़े मर्दे मर्द खुदा थे, बड़े आवदो जाहदो पारसा थे, गनी थे नबी थे, बड़े मुकदा थे गाजी थे, दिलावर थे वो खैरे शफा थे, करवाने की मर्द की वो आले दवा थे, देखने के गुरु गोबिंद सिंह थे लेकिन जाहरे खुदा थे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जाहरे खुदा नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे विच सारे गुण सन। विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, नैण तो नशीले, सतगुरु पातशाह जी दे नैण तो नशीले मसतीले दो जादू परे, नैण तो नशीले मसतीले दो जादू परे, तनक निहार सब सुरत भुलात है, तनक मात्र तनक निहार सब सुरत भुलात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, भक्ति और वीरता की गर्दन चुकात है, फतेह चाड़े आंगन और लक्ष्मी दबाए पग, गोबिंद मरगिंद गुर जीते नहीं जात है। धन गुरु गोबिंद साहिब मरगिंद की तरह शेर की तरह सतगुरु पातशाह जी कदी भी रण मैदान विच हारे नहीं है, सतगुरु पातशाह हमेशा जित हुई। तो सतसंग जी औरंगजेब का ऐलान होया कि मेरे कन्ना विच इन्हां सिखां दी ढोलकी ते चिमटे की आवाज ते ये जिहड़े सत श्री अकाल दे जकारे छड़दे ने, इन्हां नूं जरा चेतावनी कर दिओ, अपने छपाइयां नूं कह दिता कि दस दिओ कि मेरे कन्ना विच ये ढोलकी चिमटे की आवाज ना पवे, मेरे कन्ना विच ये जिहड़े जकारे छड़दे ने सत श्री अकाल दे इन्हां दी आवाज ना पवे। तो कुछ मसंदा ने आके सतगुरु पातशाह चरणा ते बेनती की, महाराज बड़ी डर वाली गल है, बड़ा एक अनोखा चैलेंज औरंगजेब का होया है, सतगुर आपां लड़ाई झगड़े विचों की लैना है, तो कृपा करो कि आपां एक भोरा पुट लईए। आप जी नूं असीं मशवरा देंदे हाँ, सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे सतगुरु पातशाह जी, ध्यान देना, सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे, कहिंदे सतगुरु पातशाह जी गरीब नवाज जी ये कृपा करो कि आपां एक भोरा पुट लईए, उस भोरे विच बैठ के आपां ये आस्ता आस्ता हौली हौली पाठ करा करांगे, आस्ता आस्ता बाणी पढ़ लिया करांगे, ते हौली हौली ढोलकी वजाया करांगे, ते उत्थे जकारे छड़ लिया करांगे पूरे विच ही बैठ के, ते आपां की लैणा है लड़ाई झगड़े चो। ते सतगुरु पातशाह जी हस पए, कहिंदे ने तुसां ते ये मन विच ठान लई है, मन विच विचार कर लई है, पर सतगुरु पातशाह कहिंदे मेरे मन विच जो फुरना है वह भी जरा शरवण करो। सतगुरु पातशाह कहिंदे उन्हें यह ऐलान कर दिता है कि मेरे कन्ना विच ढोलकी की आवाज ना पवे, नगारा मर दिओ। सतगुरु पातशाह कहिंदे नगारे ते चोट मारो, नगारे ते चोटा वजन ते सिंह चढ़दी कला विच जकारे छड्डन। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे तुसीं भोरे की गल करदे हो, असीं कहिंदे हां खालसे का जिहड़ा निशान है उच्ची पहाड़ी ते चुल्ले, दूरों दूरों पता लगे कि आनंदपुर साहब का यह लोहगढ़ का किला है, ये आनंदपुर साहब की पावन धरती है, गुरु कलगीधर पातशाह विराजमान हैं। तो सात संगत जी सतगुरु पातशाह कहिंदे गुरसिखो, तो सतगुरु पातशाह कहिंदे आ बोल नगारे ते वजने चाहिए ने, ये जिहड़े बोल है धमाकेदार जोरदार वजनदार शक्तिशाली, ये जदों वजणगे नगारे ते देखो फिर उहदे कन्नां विच जदों गूंजा पैणगे तो पता लगेगा। तो सत श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी इन्ने अणख, सतगुरु पातशाह जी इन्नी जुरत, इन्नी शक्तिशाली वीरता दे पुंज सतगुरु पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह जी तो उचारण कर रहे ने तराना सब ध्यान देना। दागड़ दी धर्म दिगतांग दागड़ दी ढिम धरना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, बागड़ दी बरिकते बांग तागड़ दी तोम तोम तरना, तदर दानी दानी तुम दानी तदर तुम धिरना। अखीर ते सतगुरु पातशाह कहिंदे धीम ते धरना, इहदे विच विचित्र वीणा ते सितार दे बोल हन धीम ते धरना। तो सतगुरु पातशाह कहिंदे तदर दानी दानी तुम दानी तदर तुम धिरना, हे अकाल पुरख तेरी कृपा है, तेरी कृपा ते तदर दानी दानी, हे दानी हे दान करन वाले, हे अकाल पुरख सब नूं देण वाले सब नूं बख्शिश करन वाले, कृपा कीती है
ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੋਲ।

और सत्संग जीओ। जो बच्ची का जन्मदिन है, बच्ची अविनाश कौर, गुरु उसनु उम्र दराज करे, विद्या दान बख्शे।

गंभीर प्रकृति का राग है। विदक दी आत्मा कृपा दी जाचना कर दी है, त्यागते दी खोज कर दी है। इसलिए इस राग विच गुरु साहबान ने मन, मत, बुद्धि, आत्मा, मौत, मुक्ति आदि गंभीर विषयां विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतां दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखन जे खसमै चित करे, पाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते दैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा रात दा प्रथम पहर पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द बोल हन गौड़ी राग सुलखनी दे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे।

गाहे न देखी कार कर दम बदबख्त हम चो वकील गाफिल बदबख्त हम चो वकील गाफिल बेनजर बेबाक बेनजर बेबाक नानक विगोइ जंतुरा तेरे चाकरां पाखा जन नानक।

husband, and he said,

Satan, my body has been put under the grave.

पहला सुचा तो सुचे देखा आए सुचे अखिर को पहला दुख जाए सुचा है सुचे लगा पहुंचा है बोतरी जाए सुचे आए।

पर खर्च मंगा जब दे खा दीवाने को कलमे का हमा तुम्हें लाने लेखा पूछते

खाए कतने करे बराबरी कर प्यारे सिंगर पाए वजू गुआया गुलामी पौना खाए।

मानवीय गर्भपात प्राप्त करने का खास तरीका रात कपूरी बंदी खेड़ी बात पिछड़ी जिसमें अमृत कथूरी बख्शिश वंडी जाती है और प्राप्त कौन कर दे जो अमृत जाके साई नाल गुण जरा सुता पे दात वंडी जा रही और सुता पे मालक की बख्शिश वंडी जा रही पर वो कुराड़े पे मारे फरी भी कह सुता इंसान साई भी दात तू बन दात नहीं फरी जी ने तू दुख है जरा इंसान अमृत नहीं जा रही है और जीवदा मोटा है एक मौका तो आ गया हिलजुल नहीं सकता सदी भी खामोशी ताई पर फरीद जी कहने अमृत वेले ना जाने वाला साई का शुकराना ना करने वाला तो तुरदा तुरदा मर जाए पिछल रात ना जागना जीवन का मुंह सभी जेते रब भी सार तू रब ना विसार बख्शिश भी मारो रात कसूरी जिंदगी सुतिया मिले ना पाओ ये बख्शिश कौन लेंदा जिना मैं निंद्रा तेना मिलन को मिलन को आओ जो अमृत वे नींद त्याग के साई के प्यारे जुड़ते हैं तेना मिलन को आओ उन्होंने मिलने वास्ते साई आप आ गए या तेना मिलन को आओ उन्होंने अपने को ही बुला बख्शिश बख्शिश तो हर समय सब ऊपर कृपा करते अरे खास धरती किसी वे बीज पा के उग पे सियाणा किसान और धरती उस वे बीज पाता है जिस वे धरती वत्तर है वत्तर वेले बीज पाइए एक दाने के हजारां दाने सियाणे किसान ने उदमी किसान ने वत्तर संभाले बीज पाया खुद भी किसान का जोड़ा खेत है हरा भरा जोड़ा खेत भरया होगा घर ही भरे आलसी किसान भुखा मर आलसी इस तरह आलसी इंसान जिसने अमृत पीले की बख्शिश नहीं संभाली और फिर भुखा उद्यमी गुरमुख जिसने उद्यम क्योंकि उद्यम करना यह इंसानी है गुरमुख कहता जी गुरुद्वारे जाया करो अमृत वेले जा गया करो भी मेरे थोड़ा वक्त जिमें रब करा यह कह इंसान की कर करने वाला तो रब है पर रब भी उहदे वास्ते करदा है जो इंसान पहला आप करता है इसलिए उद्यम करना इंसानी फल उद्यम फल लाना यह वाहिगुरु उद्यम करेंदे जीव कमाउंदे सुख पहुंच ध्यान दें तो प्रभ मेरे नानक उतरी चिंत इंसान चिंता रात लाखों पति करोड़ों पति इंसान कारोबार का कोई पता नहीं राति चिंता नींद नहीं करेगा
ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੱਤੀ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਸ ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਉਹ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਲਜਲ ਦੀ ਆਲਸ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਲਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਸਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਮਾਉਂ ਹਰ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾਬੀ ਜੀ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸੱਚਾ ਇਸ ਧੰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਧੰਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਜੋ ਧੰਨ ਹੈ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਧੰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹਰ ਸਮਾਂ ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਲਿਪ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਲਿਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ

बंदे। मैं उन्होंने जो स्नान करके इंसान कल्ला आया है, एक दिन कलियां सुन जाने एकांत जगह के, फिर मन में एकाग्र करके गुरु का जाप श्रीवाल गुरु का जाप गुरु का गुरु जाप की है गुरु का मंत्र मंत्र की है गुरु मंत्र प्यार नाल सारे आपको वाहेगुरु जो वाहेगुरु नाल जोड़ जो साडे मन के उपर पापा की नहर नहीं लग और कोई पानी नहीं और कोई दारू नहीं। धन गुरु नानक पातशाह जी ने श्री जपजी साहब जी के अंदर फरमाया शरीर मैला हो जाए स्नान कर ले, कपड़ा मैला हो जाए साबुन ला ले, मन भी मैला हो जाए ग्रस्ती कई गलतियां हो जाए। इस जन्म में या और किसी जन्म में थी, क्योंकि जन्म धर्म की इस मन को मरना भी जन्म धर्म की, और कोई नहीं गलती की थी किसने हो काला हो और नरंकारी पातशाह धन गुरु नानक बाबा कहेंगे कोई नहीं जो कपड़ा मैला हो गया साबुन ना हकीकत कपड़ा मैला नहीं इसलिए मैल कर साबुन जे मन मैड़ा हो गया है असलियत मन मैड़ा नहीं सी। अगर कहने मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल नहीं पछाने कुसंगत पै गया फिर गलतियां कीतियां ओदा रंग मन पे चल पापण का रंग चल तो फिर की कर तो हजे समाज बड़ी सुंदर उदाहरण पातशाह ने दी श्री जपजी साहब जी के पास। श्री जपजी साहब महापुरुषों का कहते हैं जेड़ा गुरसिख प्यार नाल श्री जपजी साहब जी का पाठ करता है वह धन गुरु नानक पातशाह के दर्शन पे करता है। श्री सुखमनी साहब पढ़ने वाला पंजे गुरु नानक के दर्शन पे जप जी तई तू जीवेगा जो जपेगा की जप जी जो हनुमान दिन भरी है हथ पैर तन देह पानी धोता उतर स्पेह भूत पली की कपड़ होए दे साबुन लिए ओ तोए पर ये मत पापा के संग ओ तो पैर पे रहे नाम दर्शन कहते हैं जी मन नहीं लगता एक क्वेश्चन फिर भी नाम महापुरुषों का कथन है भाई अग न किसी तरह हथ ला दो अग साड़ अग न जान के हथ लाओ तो भी साड़ेगी जे गलती नाल हथ लगता तो भी साड़ेगी क्यों अग का सुभा अगन देवता का सुभा निरंकार ने साड़ना भी किसे तरह मन कागर करके वाहगुरू का जाप करिए बड़ा ही महत्व है ना पर जे सुधे सिद्धी रसना जप रही है श्री वाहगुरू एदा भी फल एना कि फल अग न किसी तरह खिलाफ साड़ी है नाम किसी तरह जपो नाम पापा अनुसार दीवा बले अंधेरा जाए कितनी सुंदर मिसाल अंधेरे को दूर करना हो और कोई साधन नहीं दीवा जला जाए अंधेरा किधर गया दीवे ने खा ले दीवे की खुराक अंधेरा किसी तरह नाम की खुराक ही पाप दीवा बले अंधेरा जाए वेद पाठ मत पप तो इस वास्ते एक मन होए गुर जाप जपन कुरबाणी तिना गुर सिखा तो साध संगत चल जाए सत्संग उठा जिस तरह तुम जुड़े ये जरूरी नाम जपना जरूरी है दान करना जरूरी है सिखी नाल जुड़ना जरूरी है उसे सत्संग आके जुड़ना क्योंकि सत्संग आके मेरे माधव जी सत्संगत मिले इतने आके सानू गुरमत की रोशनी मिली गुरमत की पढ़ाई असी पढ़नी है जी वह पता नहीं तो भाई साहब जी ने कहा मैं उन्होंने को सिखा तू कुरबान जाना साध संगत चल जाए गुरबंदे कुरबानी तिना गुरसिखा
गुरबाणी नित गायस नित असी नित नहीं इस करके साडा मन केवल कमजोर है। रोटी नित ना खाई शरीर कमजोर है। गुरबाणी का सुनना ते पढ़ना नित नेम नित कदे भी नागा नहीं क्योंकि नितनेम बड़ी रोज आहू जाने वाला नितनेम मिलता ओरी जरूर तरक्की रोज नितनेम नाल दुकान से जाने वाला दुकान भी इसी तरह गुरु दे मिलाप रोज का नितनेम सैणी भैन बच्ची घर की सफाई रोज कर दी एक दिन सफाई ना करो घर ही मैला नहीं तो इसे तरह नितनेम रोज करो जो करते हैं भाई साहब जी नित गुरबाणी नित गाय सुन दे गुरबाणी किन्ना खान मन मेरी कर मेर मिले गुरबाणी किन्ना गुरसिखा पाए भगत गुरपुरब है मैं गुरसिखा को कुर्बान जाता है जो श्रद्धा के कामना न गुरु दे गुरपुरब भाई साहब कुर्बान जाते उन्होंने गुरसिखा जिन्होंने श्रद्धा तो पावना गुरपुरब तो आप करो अरदास धन गुरु नानक पातशाह जी के है मेरे धन गुरु नानक नारायण पातशाह तेरा आगमन है महान पवित्र ज्ञान जो नेड़े है जो गुरु के गुरपुरब उस दिन की उड़ी सारा विश्व कर जिथे भी कोई धन गुरु नानक पातशाह जी का नाम लिया बैठा है उस दिहाड़े की उदीक बेहतर जिस दिन सतगुरु नानक परकिया मिट्टी धुंध सारे दिन की चाहना हो चाहना आप सकते वास्ते दैवसा संगत जिथे दास प्रबंधकों के हुक्म अनुसार इथों दिया संगतों के हुक्म अनुसार इथे पुज तो ना भी बेनती करना है आप भी कुंभ मात साईं के दरबार का श्रद्धा तो प्यार में गुरपुरब मनाया जे गुरपुरब असी ना मनाई तो गुरु निराज तो नहीं वो तो निर्वय फिर असी क्यों मनाने इस वास्ते कि सानू अपना तन मन धन सफला करने का चांस हो तन करके भी मन करके ते तन भी गुरु के अर्पण करके आई तन है गुरु ते जे गुरु किसान दाने धरती देने ते जे किसान को धरती ने दाने नहीं देने भुखा मरे धरती तू लैके दाने किसान फिर धरती में देता है धरती होर वधा के उन्हें देती और दात गुरु आप पिछले साल में इस महान गुरपुरब से आप जी के हुक्म अनुसार हाजरियां करने वास्ते दास आया से प्रबंधकों का हुक्म क्योंकि मैं तो बेनती की थी जिथे एक साल गुरपुरब से जाइए एक दो साल ना जा पर सर्व सत्कार में गरेवाल साहब होर गुरु के लाल प्रबंध कह लगे भाई साहब नहीं संगति तो दास पूजा है तो मैं अगली बेनती करांगा कि आप भी हम मा के श्रद्धा के प्यार नाल गुरपुरब दास ने राखी जो प्रोग्राम गुरपुरब का आप जी ने छापे मैं पढ़िया और पौने छे आसा जगवार का कीर्तन करा दास पूजा मैं तो समझ गया कुछ मिनट दो चार मिनट लेट बच्चियां की कीर्तन कर रहे हैं बड़े प्यार तो दास कहूं कि चार सी भी लेट संगत की कहेगी
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੋ, ਜੁੜ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਫਲ ਕੁਲ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਲਗਾ ਕੇ ਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਬਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ, ਗੁਰੂ ਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ।

0: जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सोमर से तू गुरु मन भाव
1: जिसनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे
1: जन नानक तू

0: ਚੋਦੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ
1: ਤਤ ਹੂੰ ਸੁਖੇ।

धार अणियर कमंद कोरड़ा, तमक धार अणियर कमंद कोरड़ा, पंज शस्त्र प्र